0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: बीमारी हक दे अविलाजी सुनत अमल दे अविलाजी सुनत अमल दे
4: ओस कचेरे तासु तदा से अमराज भी चितासु वरना ढेर परेशान आयो और ढेर गर्जिदली कड़ीदली यो ढेर गर्जिदली कड़ीदली यो
3: नो बिल्कुल मायूस के गई मां अल शिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रावड़े और द हकीम मौलाना नूरुल हुदा सेवना पल इलाज तरला सकवले शे
4: और दोनों मालूमात दे पारा पदग नंबर कॉल कवले शे
3: 0319 55 23 404
5: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
6: 88.4 FM.

0: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की नशरियात। हमारे साथ रहिए।

दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and very warm welcome to all the sweet listeners of Global FM 91 Radio Pagam 97.4 Paharpur and Radio Aman 88.4 Talk. جناب ہمیشہ کی طرح آج بھی تین اسٹیشن اور ایک آواز, لیکن آئی تھنک ابھی مجھے جو ہے اطلاع ملی ہے کہ پہاڑ پور میں موسم کی خرابی کی وجہ سے جناب آج ہمارا پروگرام جو ہے کیسن ٹی ٹائم جو ہے پہاڑ پور میں نشر نہیں ہو پا رہا. تو جناب ڈونٹ وری, جو پہاڑ پور کے سننے والے ہیں لوگ ہیں وہ اس وقت ہمارے لنک کے تھرو, ہمارے لنک کیسن ریڈیو کا جو لنک ہے اس کے تھرو بھی ہمیں سن سکتے ہیں ہمارے پروگرام کو, یا پھر آپ ہمیں فیس بک کے تھرو کیسن شاپ کے پیج سے بھی آپ ہمیں سن سکتے ہیں. وہ لوگ جن کو ریڈیو پیغام 97.4 یعنی کہ پہاڑ پور پر آج ہمارا پروگرام سنائی نہیں دے رہا, تو الٹرنیٹ وے پر وہ ہمیں ضرور جوائن کریں گے ہمارے پیج کیسن شاپ کے اوپر, یا پھر ہمارے جو آن لائن ایڈریس ہے کیسن ریڈیو کا کہ لوگوں کے پاس سیف ہوگا تو اسے لنک کے اوپر کلک کر کے بھی آپ ہمیں سن سکتے ہیں. جناب کیسے ہیں سبھی لوگ؟ جی جناب امید یہی کروں گا کہ جناب بالکل جی خیریت کے ساتھ ہوں گے, بالکل خیریت کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ہوں گے جناب. اور اس وقت چائے کے ایک کپ کے ساتھ, جیسا کہ میرے سامنے بھی چائے کا کپ جناب آ چکا ہے اور آپ سب کے پاس بھی جو ہے آنے والا ہوگا یا آ چکا ہوگا یا تھوڑی بہت پی چکے ہوں گے, لیکن چائے کے مزے کے ساتھ. جی جناب چائے کے مزے کے ساتھ, اور آج تو مزہ کچھ دوبالا ہے کیونکہ جناب گرمی کے موسم میں جب ایسا موسم آپ کو انجوائے کرنے کو مل جائے جناب, جب آپ جی جناب بالکل خوشی کا اظہار ہوتا ہے, اور اس دن بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ جب آپ کو کچھ ایسی چیز نظر آتی ہے جو آپ کے دل کو خوش کر دیتی ہے تو آپ کے پورے بدن میں خوشبو سی آ جاتی ہے اور سکون سا آ جاتا ہے. اور آج بھی میرے خیال میں کہ ابھی آپ لوگ گرمی میں سونے کے بعد اٹھے ہوں گے اور جب باہر نکلے ہوں گے, اور اتنا پیارا سا موسم جو کہ اس وقت بادل آئے ہوئے ہیں, گردہ بنا ہوا ہے جناب, اور دھوپ کا نام و نشان نہیں ہے, تو جب سورج پردہ کر جاتا ہے تو جناب موسم کے اوپر اوور آل اثر آ جاتا ہے. تو میرے خیال میں کہ جس طرح ڈیر اسماعیل خان میں موسم اچھا ہے, پہاڑ پور میں تو اسی وجہ سے ہی ٹرانسمیشن ہماری نہیں جا پا رہی کہ جناب وہاں پر جو انہوں نے ریڈیو کو آف کیا ہوا ہے وہاں پر موسم کچھ زیادہ خراب ہے. یعنی ہو جی اللہ تعالیٰ رحمت والا معاملہ فرمائے, اور ہوا بھی ہو بارش بھی ہو موسم کی تبدیلی بھی ہو, لیکن مثبت تبدیلی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے جناب. رحمت کو جو ہے زحمت نہیں ہونا چاہیے, اور بعض اوقات جو ہے ایسے معاملات آ جاتے ہیں. اس دن ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ مہمان کو اتنے لمبے عرصے تک کسی کے پاس نہیں ٹھہرنا چاہیے کہ اس سے جو میزبان ہے وہ گناہگار ہو جائے. تو بھائی اتنا بڑا جو ہے جب آپ مہمان کو بوجھ سمجھتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ گناہ کا کام کر رہے ہیں, یعنی کہ مہمان جو ہوتا ہے وہ رحمت ہوتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ اگر آپ کسی کے مہمان بنتے ہیں تو بھائی اتنے ہی بنے جتنا وہ آپ کو برداشت کر سکے, کیونکہ اگر وہ کیونکہ مروت کی وجہ سے رشتہ داری کی وجہ سے کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ بس بہت ہو گیا بھائی, آپ نے جو ہے ہمارے گھر میں چار پانچ دن گزار لیے ہیں, اب کسی اور رشتہ دار کے گھر جائیں. تو ایسا اگر آپ سوچتے بھی ہیں نا جناب تو آپ گناہگار ہوتے ہیں. اگر آپ ایسا سوچتے ہیں اور آپ اپنے کسی مہمان کو اپنے اوپر بوجھ سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے جناب, بوجھ سمجھ رہے ہیں, تو آپ گناہ کا کام کریں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی کے گھر میں جا کر اتنے لمبے عرصے کے لیے مہمان مت بنو کہ وہ بیچارہ آپ کی وجہ سے گناہگار ہو جائے. تو بھائی یہ زحمت اور رحمت سے بات نکلی تھی کہ جناب جو بارش ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے, اچھا موسم بھی رحمت ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات اسی آندھی کے اندر, اسی بارش کے اندر اور اسی موسم کے اندر بہت ساری تباہیاں بھی ہوتی ہیں. تو ایک اور حدیث بھی موجود ہے کہ ایسے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی طرف جاتے تھے, ٹھیک ہے جناب, مسجد کی طرف جاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بارش کے اندر جو ہے کوئی عذاب الہی ہو. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ جناب یہ جو موسم اچھا بنا ہوا ہے یہ خوشگوار موسم رہے, بغیر کسی کو نقصان پہنچائے, بغیر کسی کی فصلوں کو نقصان پہنچائے, یہ اچھا سا موسم ہماری صرف گرمی کو ختم کرے, موسم خوشگوار رہے اور ہم خوشحال رہیں. کیونکہ جناب جو باہر کی انوائرمنٹ ہوتی ہے, جو باہر کا اثر ہوتا ہے, वो आपके दिल के ऊपर भी आता है। जनाब मुझे कहते हैं खलील दाबे जमान, और आज आप हमें सुन पा रहे हैं सिर्फ दो रेडियो स्टेशन से, डेरा इस्माइल खान ग्लोबल एफएम 91, और आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त जी रेडियो अमन टांग से, बिल्कुल जिबरा रहा सर।
1: फिर बुला मुझको मदीने में।
0: जी जनाब, और मैं आपको कह रहा था कि पहाड़पुर के लिसनर जो है हमारे इतने शैदाई हैं हमारे प्रोग्राम के, क्योंकि उनको केसन कंपनी की हकीकत का पता है कि केसन उनके घर का फर्द है, या केसन उनके घर की ऐसी चीजें हैं, केसन की प्रोडक्ट जो उनके घर की जरूरत बन गई हैं, और उनका ओढ़ना बिछोना केसन है। क्योंकि केसन जो है कुछ इलाकों में, जैसे कि टांग का इलाका है, तो फर्स्ट टाइम हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को इस कंपनी के बारे में पता है भाई, उनका ये ओढ़ना बिछोना है, तो आप यकीन करेंगे कि आज पहाड़पुर में हमारी ट्रांसमिशन नहीं जा रही, तो लोग इतने बेताब हैं कि बिल्कुल जी डायरेक्ट कॉल्स के ऊपर शुरू हो गए हैं, और फेसबुक लाइव के ऊपर भी मुझे नोटिफिकेशन आ रहे हैं। एमबी साहब पहाड़पुर से जी बिल्कुल हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे केसन शॉप का जो पेज है वहां पर भी हमारा शो लाइव आ रहा होता है, तो वहां पर आ चुके हैं। पहाड़पुर से ही मोहम्मद हमजा खेमटा जो है वो भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, तो वही इन लोगों की इतनी मोहब्बतें हैं, हालांकि ये सुबह भी मेरा प्रोग्राम सुनते हैं रेडियो पैगाम पहाड़पुर का जो है, वहां पर केसन का पैगाम सुबह प्रोग्राम मॉर्निंग शो भी होता है, आपके टांक में और डेरा में नहीं होता, लेकिन जिस इलाका जो जितना कमा के देता है, हाँ जनाब, जिन लोगों की जितनी मोहब्बत होती है भाई, उसको उतनी ही मोहब्बत लौटाई जाती है। तो बिल्कुल जिस तरह पहाड़पुर वाले जिस तरीके से केसन को सपोर्ट करते हैं, आप सोच नहीं सकते कि एक एक बंदा 5,000 की चीज़ें लेके जा रहा होता है, और वो समझते हैं कि केसन के अलावा कोई और कंपनी है नहीं जिसके ऊपर हम एतमाद करें या जिसकी प्रोडक्ट हम खरीदें। इतनी बड़ी तादाद में रेडियो पैगाम पहाड़पुर पर हमारे चाहने वाले अल्हम्दुलिल्लाह, और इतनी मोहब्बत के साथ कि सुबह भी मुझे सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका दिल नहीं भरता, और वो 4 बजे भी, हालांकि आज उनके यहाँ नहीं सुनाई दे रहा मेरा प्रोग्राम, तो वो दूसरे टूल ढूंढ रहे हैं कि भाई और कहाँ से जाके सुना जाए। तो जनाब पहाड़पुर वालों की ढेर सारी मोहब्बतों का शुक्रिया, डेरा इस्माइल खान वालों की ढेर सारी मोहब्बतों का शुक्रिया। मैं ये नहीं कहता कि डेरा वाले सपोर्ट नहीं करते केसन को, बेतहाशा सपोर्ट करते हैं भाई, और इसका सबूत क्या है, किसी भी कंपनी का पॉपुलैरिटी का सबूत क्या होता है? वैसे अगर मैं आज आपसे सवाल करूं, क्या प्रूफ होता है कि कंपनी पॉपुलर है, कंपनी को मैक्सिमम लोग पसंद करते हैं, क्या क्राइटेरिया आपके सामने है, क्या दिमाग में कुछ आता है आपके सामने? जाहिर बात है आपके दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर आ रहा होगा। तो जनाब किसी भी कंपनी की जो कामयाबी होती है ना, वो ये होती है कि हर दुकानदार उसको रखने पर मजबूर हो जाए। ठीक है जनाब, हर दुकानदार जब मजबूर हो जाता है ना किसी कंपनी को रखने के ऊपर, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि यार उसके खरीदार बहुत ज्यादा है। ठीक है जनाब, उसको खरीदने वाले बहुत ज्यादा है। अब मैं डेरा इस्माइल खान की अगर एग्जाम्पल दूं कि डेरा इस्माइल खान में कहाँ कहाँ केसन आपको मिलती है, कोई एक ऐसा स्टोर नहीं है जहां पर आपको ना मिलती हो। लेकिन जब हम बड़े बड़े नाम उठाते हैं, जैसे कि डेरा इस्माइल खान के अंदर गुलशन कैश एंड कैरी है, जो लोग हमारे यूजर हैं भाई, ठीक है जनाब, जो लोग हमारे यूजर हैं जो केसन को यूज करते हैं, तो वो कभी जाकर कैश एंड कैरी, गुलशन कैश एंड कैरी जो है डेरा इस्माइल खान का सबसे बड़ा ग्रॉसरी स्टोर है, सबसे बड़ा लोगों की वॉक इन जो है इसी स्टोर के ऊपर होती है, सबसे ज्यादा लोग खरीदारी इधर से करते हैं हर चीज से। और वहां पर आप जब जाएंगे तो आपको आयल के खाने के अंदर केसन आयल नजर आएगा, जहां पर मल्टीनेशनल ब्रांड पड़े होंगे वहां पर आपको कोई और एफएम का प्रोडक्ट नजर नहीं आएगा सिवाय केसन के। ये आंखों देखा हाल है, जाके देख लें आप वो कौन सी प्रोडक्ट रखते हैं जो वेल नोन होती है, जिसको लोग तलब करते हैं, डिमांड करते हैं। तो कैश एंड कैरी पर जाएंगे तो भाई ये नहीं है कि उन्होंने हमें एक शेल्फ दिया हुआ है, हर शेल्फ उनका सेपरेट होता है, यानी कि साबुन अलहदा पड़े होते हैं, शैम्पू अलहदा, सोप अलहदा, फेस वॉश अलहदा, क्रीमें अलहदा। तो आप जिस खाने के अंदर, जिस शेल्फ के अंदर भी जाएंगे, आपको हर शेल्फ के अंदर केसन नजर आएगी। तो आपका सर फखर से बुलंद हो जाना चाहिए कि भाई आप एक ऐसी कंपनी के प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसको डेरा इस्माइल खान का सबसे बड़ा स्टोर ऑनर करता है, सबसे बड़ा स्टोर, और वो कहता है कि इसके बगैर खरीदारी नहीं है, लोग इतना ज्यादा केसन को खरीदते हैं। यहां तक कि एक दफा उन्होंने हमें कहा भाई आपके शैम्पू के अंदर होता क्या है, तो मेरे साथ मार्केट असिस्टेंट भी था, तो हम हंस पड़े, तो एक दूसरे को हम देने लगे। उन्होंने कहा नहीं आप डालते क्या है अपने शैम्पू के अंदर। मैंने कहा क्यों खैरियत? कहते यार ये जैसे ही हम शेल्फ में लगाते हैं खत्म, जैसे शैल में लगाते हैं खत्म, यानी कि इतना कोई बड़ा ब्रांड भी शायद इतना जल्दी ना बिकता हो जितना केसन का शैम्पू बिकता है। तो मैंने कहा भाई ये वो शैम्पू है जिसके बारे में हम कहते हैं कि घर के पांच बंदे जिनको पांच बड़े मसले हैं वो सिर्फ शैम्पू इस्तेमाल करें, इसके अंदर इतनी चीजें हैं, इतना जबरदस्त फार्मूला है, 13 चीजों से मिलकर बना हुआ है कि हर बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है और हर बंदा अपने मर्जी का फायदा उठा सकता है। लेकिन अब यहाँ तक कि गुलशन कैश एंड गैरी के ऊपर एक दफा वहां के जो मैनेजर हैं रिजवान भाई, आप उनसे जाके कभी पूछिएगा, वो अक्सर मेरे साथ ना पिक्चर शेयर करते रहते हैं, भाई ये बंदा आया हुआ है आपका, ये पिक्चर इसने उठाई हुई है, ये मोबाइल में इसने तस्वीर रखी हुई है। एक दिन उसने मुझे एक डॉक्टर की पर्ची भेजी, ठीक है जनाब, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन थी और उसके ऊपर शिफाय दर्द लिखा हुआ था, डॉक्टर की कंसल्टेंट डॉक्टर था, हालांकि हमारी टीम या हम कभी भी डॉक्टर के पास नहीं गए, हम डॉक्टरों के पास कभी गए ही नहीं है, ठीक है जनाब, हम खुद डॉक्टर बनकर यहाँ पर चीजें भेजते हैं आपके ऊपर, हम भी डॉक्टर से कम नहीं है भाई। तो नॉलेज की बात होती है ना, डॉक्टर डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर वो होता है जिसके पास प्रोडक्ट का नॉलेज हो, जिसके बारे जिसको डिजीज का पता हो, जिसको बीमारी के बारे में पता हो, जिसको पता हो कि इसको क्या दवाई देनी है, तो बस वो इसका नॉलेज है और वो डॉक्टर है। तो ये सारी चीजें हमें भी पता होती हैं। तो आप यकीन कीजिए कि वो बता रहा था भाई कोई आर्थोपेडिक का डॉक्टर है, सॉरी नैरो का डॉक्टर है, जिसकी ये धड़ाधड़ पर्चियां आ रही हैं और वो आपका ऑयल लिख रहा है, शिफाए दर्द ऑयल, जो कि जोड़ों के दर्द का हमारा तेल है। सो जनाब बाद में कह रहा था कि कहाँ नहीं है डेरा में आपको, अच्छा A1 कॉस्मेटिक बहुत बड़ा स्टोर है सर्कल रोड के ऊपर, हबीब बैंक जो ईदगाह वाली ब्रांच है उसके सामने A1 कॉस्मेटिक है, वहां पर आपको केसन की हर प्रोडक्ट मिलेगी। क्यों, कोई दुकानदार भाई ऐसे प्रोडक्ट रखता ही नहीं होता, कौन अपने पैसे फंसा के बैठेगा, वही रखेगा जिसको जिसको पता है कि इसकी इतनी डिमांड है। अच्छा आगे बाजार में चले जाएं, सबसे बड़ा जो लग्जरी किस्म का मैं कहता हूं कि डेरा का कॉस्मेटिक का स्टोर है ना, वो शीश महल है, जहां पर मयार होता है, मयार के अलावा वो की कोई चीज रखते भी नहीं है, ठीक है जनाब। तो आप FM के ऊपर इतनी कंपनियों के नाम सुनते हैं, इतने प्रोडक्ट सुनते हैं, तो इन बड़े पॉइंट्स के ऊपर जब जाए ना तो नजर घुमाया करें कि और कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, आपको सिर्फ केसन नजर आएगी। ये मैं मयारी स्टोर की बात कर रहा हूँ, जो मयार को देखते हैं, जो रिजल्ट को देखते हैं, जो डिमांड को देखते हैं, ठीक है जनाब। तो आपको केसन हर जगह हर तरफ नजर आएगी अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी बड़े स्टोर हैं, जैसे कि मैं शीश महल का आपको कह रहा हूँ डेरा का गोमल मार्केट के अंदर है, जैसे कि अलफरीद कॉस्मेटिक गोमल मार्केट के अंदर है, जैसे कि मियां कमर्शियल मार्केट के अंदर फैमिली शॉपिंग सेंटर है, ठीक है जनाब, जैसे कि मियां कमर्शियल मार्केट के अंदर अमान हारसेरा एंड फारूक हारसेरा, ठीक है जनाब, ये बड़े बड़े दुकानें हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स के मैंने आपको नाम बताए जो हमारी कंपनी को ऑनर करते हैं लोग, ठीक है जनाब। और केसन के प्रोडक्ट्स को अपने पास रखना जरूरी समझते हैं कि ये डिमांड वाली कंपनी है, और डिमांड कब होती है किसी भी कंपनी की जनाब, जो आपको ढेर सारे रिजल्ट देती है, और रिजल्ट ऐसे थोड़ी आते हैं, बातें करने से रिजल्ट तो नहीं आते होते ना, रिजल्ट आते हैं जब आप कोई चीज डाल के जो है कस्टमर को देते हैं और आपका कस्टमर इस्तेमाल करता है, यूजर इस्तेमाल करता है और उसे समझ आती है वाकई यार ये कोई चीज बनाते हैं, और ऐसी चीज जो कि विदाउट साइड इफेक्ट के हमें रिजल्ट देते हैं।

जी जनाब, बहुत सारे प्रोडक्ट आप लोगों के पास हमारे मौजूद हैं, और एक प्रोडक्ट जो केसन की कंपनी की पहचान है, क्योंकि सबसे पहली प्रोडक्ट हमारी यही है केसन हेयर ऑयल, और उसके बाद शैम्पू हम बाद में लेकर आए जब लोगों ने कहा कि भाई जब इतनी ज़बरदस्त किस्म का आपने शैम्पू ऑयल बनाया है तो आपने शैम्पू भी इसका ज़रूर लॉन्च करें, तो फिर हमने जब शैम्पू बनाया तो शैम्पू ऑयल से भी आगे निकल गया। ठीक है जनाब, जो हमारे शैम्पू सेल है वो अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी आगे, ऑयल से भी आगे, क्योंकि शैम्पू का इस्तेमाल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। कुछ दिनों से हम एक कंपेन चला रहे हैं, जो है कहाँ चला रहे हैं जी जनाब, रेडियो के ऊपर हमारी कंपेन चल रही है जो आप तक अभी तक नहीं पहुंची, लेकिन आज से आगाज़ आपकी तरफ भी हम कर रहे हैं, और वो है जोड़ी, जो जोड़ियाँ केसन की, जो प्रोडक्ट है ना केसन जोड़ी जिसको हम कहते हैं केसन जोड़ी, ये बेसिकली जोड़ी है, और जोड़ी हमेशा मेल फीमेल की होती है, ऐसे ही होता है ना, तो हमने इसका नाम केसन हेयर केयर जोड़ी रखा हुआ है। तो इसके अंदर ऑयल और शैम्पू होता है, और ये जब जोड़ी लेते हैं तो आपको ये सस्ती पड़ती है एज़ कम्पेयर के आप ऑयल एक खरीदें या शैम्पू खरीदें। तो हमने इसको रिलेट किया है बड़े सगीर की पुरानी दास्तानों के साथ, जैसे कि आप किताबों में, अफसानों में, कहानियों में, फिल्मों में, ड्रामों में देखते आए हैं कि जनाब हीर रांझा, लैला मजनू, सस्सी पुन्नू, शीरी फरहाद, सोनी माईवाल, ठीक है जनाब, ये जोड़ियाँ गुजरी हैं, ये दास्तानें, ठीक है जनाब, ये दास्तानें जो कि अमर हो चुकी हैं, और हर कोई इनको याद करता है, क्योंकि जनाब इन जोड़ियों के अंदर सच्ची वफा थी, सच्ची मोहब्बत थी, सच्चे वादे थे, कोई दिखावा नहीं था, तो अमर हो गई। सच हमेशा अमर हो जाता है, जो हकीकत होती है, जो सच्चाई होती है वो हमेशा अमर हो जाती है, उसे कोई झुठला नहीं सकता। तो हम कहते हैं कि केसन जोड़ी एक ऐसी प्रोडक्ट है जो आपके घरों में पहुंच चुकी है, और इसकी सच्चाई को, इसकी पहचान को, इसके खालिसपन को कोई इग्नोर नहीं करता। जो भी लोग हमारा ऑयल और शैम्पू इस्तेमाल करते हैं उनको फीलिंग आती है, उनको हर दिन एक नया लगता है, और हर नए दिन के अंदर उनको फील होता है कि उनके बालों की खूबसूरती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि जनाब केसन वो कंपनी है अल्हम्दुलिल्लाह जो एक स्पेशलिस्ट कंपनी है, जो हर मर्ज के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए, जहाँ पर बहुत ज़रूरी है वहाँ पर स्पेशल प्रोडक्ट तैयार करती है। तो इस वक्त मार्केट में केसन का जो हेयर ऑयल है वो स्पेसिफिकली ख़ास तौर पर बालों की ग्रोथ के लिए है, बालों की नशोनुमा के लिए है, गिरते हुए बालों को रोकने के लिए है, बालों के अंदर खुश्की को ख़त्म करने के लिए, ओवरऑल जो वेलनेस है, ओवरऑल जो खूबसूरती है आपकी बालों की उसको बढ़ाने के लिए है। तो ये जोड़ी भी अमर है, ठीक है जनाब, और हर घर की पहचान है, और हर घर में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो वही किस्से और वही कहानियाँ जो है हम आपको आजकल सुना रहे हैं रेडियो पैगाम के ऊपर। हमारा ये आगाज पिछले एक हफ्ते से है, लेकिन आज के दिन जो है ग्लोबल एफएम 91 डेरा इस्माइल खान, और जो है

कहानियाँ, और इन कहानियों को आप लोगों तक पहुँचाने के लिए बेसिकली आप तक पहुँचाने का मकसद ही इस केसन जोड़ी के पैगाम को पहुँचाना है आप तक, ठीक है जनाब। और केसन जोड़ी का पैगाम जो है वो क्या है, वो ये है कि जनाब ये एक खालिस जज्बे से बनी हुई, खालिस जज्बे से, मिलावट से पाक ये जोड़ी आप तक हम पहुंचाते हैं, जिसके अंदर 30 अज्ज़ा हैं, यानी कि 17 अज्ज़ा इसके आयल के अंदर हैं और 13 अज्ज़ा इसके शैम्पू के अंदर मौजूद हैं। जी जनाब, केसन जोड़ी मोहब्बत खलूस और खूबसूरती की दास्तान। जी जनाब, हीर रांझा की बांसुरी में जो मिठास थी, सस्सी पुन्नू के सफर में जो वफा की प्यास थी, शीरी फरहाद की जज्बों में जो दीवानगी थी, और लैला मजनू की मोहब्बत में जो सादगी थी, वही खलूस, वही चाहत, वही एहसास अब हर घर में एक नई जोड़ी बनकर आया है। केसन जोड़ी, केसन हेयर ऑयल और केसन शैम्पू। सामने इकराम, मोहब्बत सिर्फ किस्सों में नहीं होती, दास्तानों में नहीं होती, कहानियों में नहीं होती, कुछ मोहब्बतें बालों की चमक में भी होती हैं। जैसे हीर के बिना रांझा अधूरा था, वैसे ही खूबसूरत बालों की कहानी केसन हेयर ऑयल के बगैर नामुकम्मल है। और जैसे लैला के नाम से मजनू की पहचान थी, वैसे ही केसन शैम्पू हर जुल्फ की शान है, हर जुल्फ की पहचान है।

मैं लिख रहा हूँ। आज की हमारी जोड़ी, पहली जोड़ी जो कि है हीर और रांझा की जोड़ी, सामने लिख रहा हूँ, बड़े सगीर की सबसे मशहूर और दर्द भरी मोहब्बत की दास्तानों में से एक दास्तान है हीर और रांझा की कहानी। सामने लिख रहा हूँ, ये सिर्फ दो लोगों की मोहब्बत की कहानी नहीं है, बल्कि मोहब्बत कुर्बानी, समाजी रस्म और रिवाज और इंसान के जज्बात की अलामत समझी जाती है। इस दास्तान को सबसे ज्यादा शोहरत पंजाबी ने जो मशहूर शायर गुजरे हैं वारिस शाह की शायरी में मिलती है। सामिन इकराम, रांझा का असल नाम हीडू रांझा बताया जाता है। वो एक खुशहाल जमींदार खानदान से ताल्लुक रखता था और बहुत खूबसूरत, नरम दिल और बांसुरी बजाने का शौकीन था। दूसरी तरफ हीर एक निहायत हसीन, बा असर और अमीर घराने की लड़की थी जो झंग के इलाके में रहती थी।

इकराम उसके दिल में हीर की मोहब्बत फिर भी खत्म नहीं होती। काफी अरसे बाद समय क्रम रांझा दोबारा हीर के इलाके में पहुंचता है। हीर और रांझा फिर मिलते हैं और इनकी मोहब्बत पहले से ज्यादा मजबूत महसूस होती है। आखिरकार खानदान वाले बजाहिर इनकी शादी पर राजी हो जाते हैं। अमेरिका में शादी के दिन हीर के कुछ रिश्तेदार जो इस रिश्ते के खिलाफ थे हीर को जहर दे देते हैं। जब रांझा को पता चलता है तो वो टूट जाता है और हीर के बगैर जीना बेमानी समझता है। बाज़ रिवायात के मुताबिक रांझा भी वही जहर खा लेता है जो हीर खा के इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। यूं दोनों दुनिया से तो चले जाते हैं मगर मोहब्बत की अलामत बनकर हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। सामने कराम ये दास्तान सिर्फ रोमान भी नहीं है बल्कि कई गहरे पैगाम रखती है। सच्ची मोहब्बत हमेशा कुर्बानी मांगती है। समाजी दबाव अक्सर इंसान की खुशियां छीन लेता है। खुलूस और वफादारी इंसान को अमर बना देते हैं। आखिरी पैगाम ये इस दास्तान के मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं है मोहब्बत निभाने का नाम है। जनाब इसी मोहब्बत इसी वफा और इसी खालिसपन की बात कर रहे हैं हम आप लोगों के साथ केसन की हेयर केयर जोड़ी में क्योंकि आयल और शैम्पू का मजमुआ है और इस जोड़ी को इस्तेमाल करने के बाद यकीनी तौर पर आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी क्योंकि आपने आज तक बहुत सारे ऑयल इस्तेमाल किए होंगे बहुत सारे शैम्पू भी इस्तेमाल किए होंगे लेकिन आजमाइश शर्त है। एक वो चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल मुख्तलिफ फार्मूला जो आपको अपना असर दिखाता हुआ हर रोज़ हर हफ्ता हर महीना नज़र आएगा। केसन जोड़ी हेयर ऑयल और शैम्पू की जोड़ी जी जनाब आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त ग्लोबल एफएम 91 डेरा इस्माइल खान और साथ में आज हमारे साथ जो दूसरा एफएम है वो है रेडियो अमन टांक। एक साथ आप लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और इस वक्त आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के लिए हमारा नंबर आप लोगों के पास मौजूद है कॉल कर सकते हैं 03449363366। ठीक है जनाब ये हमारा SMS नंबर है कॉलिंग नंबर है और दूसरा हमारा जोंग का नंबर भी है 03137985450। एक दफा फिर से आप लोगों को नंबर बताते चलें क्योंकि ये आप लोगों का वक्त है और ये आधा घंटा जो है आपकी बातें हम तक पहुंचती हैं आपकी तजावीज आपके मशवरे और आपका फीडबैक हमारे हेल्पलाइन नंबर 03449363366 पर।

0: जी जनाब, आप लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोगों के मैसेजेस जो है ढेर सारे वो हमारे साथ तरफ आ चुके हैं और इन मैसेजेस को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। और पहला मैसेज दुरे अदन का हमारे साथ मौजूद है और दुरे अदन क्या कह रही है, द यूजर ऑफ ओनली किसन प्रोडक्ट, ना शहजादी हूँ सल्तनत की और ना क्या। जी जनाब, फिर कॉल भी, एक और कॉलर भी आ चुके हैं, तो दुरे अदन का मैसेज शामिल करेंगे और इस वक्त फर्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम खलील भाई, 91 और 88 टांग पर होंगे, हमारे यहाँ तो लिंक बिल्कुल कट गया शुरू से आवाज ही।
0: हाँ बिल्कुल, आज आपकी तरफ मौसम ठीक नहीं है मुझे बताया जा रहा है।
1: अभी बारिश है, गरज चमक है।
0: ओहो, फिर तो मौसम खराब वाकई है। तो आपकी तरफ 91 नहीं सुनाई दे रहा या फिर 88 भी नहीं सुनाई दे रहा होगा?
1: बस FM पर पूरे 97.4 तो बिल्कुल ऑफ है, लेकिन आपको मैंने कॉल कर दिए, बस सलाम दो और लिसनर को सलाम दो और प्रोग्राम में मैंने आपकी हाजिरी लगवा ले, शिरकत कर लें।
0: ठीक है जी, आपकी हाजिरी लग गई और आज हम फिर यहाँ पर केसन जोड़ी का किस्सा लेके बैठे हुए हैं कि भाई ये आपके घर में जब आएगी तो आपकी लाइफ के अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली आएगी नजर है सर?
1: जी यकीनन तब्दीली तो आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह।
0: तब्दीली आ चुकी है मतलब इसका इस्तेमाल आपकी जिंदगी ऊपर असर अंदाज है ऑयल और शैम्पू का?
1: बहुत ज्यादा आ चुका है असर दोस्तों रिश्तेदारों पर, मुझ समेत सारी फैमिली।
0: यानी कि आप हमारे इस जो जोड़ी की इसका जो असर है उसकी जद में आ चुकी हैं इसके सहर के?
1: बिल्कुल, हम पहले तीन केसन की ग्रिप में है इंशाल्लाह।
0: मतलब हर तरफ से केसन की ग्रिप में है, अगर साबुन की बात करते हैं, शैम्पू तेल हर चीज
1: केसन की अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में इलाके में बढ़ा रहे हैं, जिस तरह अभी बारिश तेजी से शुरू है इस तरह है।
0: इस तरीके से बहुत शुक्रिया जनाब आपकी मोहब्बत का, थैंक यू।
1: खान वालों को बहुत बहुत बहनों भाइयों को सलाम।
0: ओके जनाब, थैंक यू सो वेरी मच जनाब। नजर हसन हमारे साथ हो, मैं आपसे कह रहा था पहाड़पुर के FM जो है हमें नहीं छोड़ते, खाना भी हजम नहीं होता, बताओ आपको इतनी मोहब्बत करते हैं केसन के साथ, और जब तक इनकी शो में हाजिरी ना हो बारिश हो रही है पहाड़पुर में, मौसम इस कदर खराब है कि वहाँ पर ट्रांसमिशन FM भी नहीं चल रहा, बंद हुआ पड़ा है, लेकिन फिर भी हमें याद कर रहे हैं। कहते हैं बस दिल से बात करती हूँ और दिलों पे उतर जाती हूँ, ना शहजादी हूँ सल्तनत की ना शायरा हूँ लफ्जों की, बस दिल से बात करती हूँ और दिल में उतर जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम हर दिल अजीज RJ एंड मोहतरम उस्ताद जी, दिल से वेलकम, प्यारे मौसम के साथ कैसे हैं आप एंड आपके फैमिली मेंबर्स एंड लिसनर्स सारे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, शो सबसे आला और बेहतरीन है एंड सोनिया भी, महानूर, नजर हसन भाई, अमीर हुसैन भाई, आप सबकी मोहब्बतों का दिल से गहराइयों से बहुत शुक्रिया मुझे लाइक करने के लिए और जिन्होंने दिल ना होते हुए मेरी तारीफ की। अच्छा जी उस्ताद जी, अच्छा जी ये कैसी बात हो, क्या मेरा दिल नहीं करता आपकी तारीफ करने को, हैं जी गंदा गलत गुमान करके बैठी हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, क्या हाल है
0: जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक मोहतरम, क्या हाल है, खैरियत से आप?
2: शुक्र है असद प्राम टांक
0: जी। असद सर क्या हाल है, मौसम कैसा है टांक में आज?
2: टांक में बारिश हो चुकी है थोड़ी सी, जमीन को गीला कर दिया है ना।
0: अच्छा जी, पहाड़पुर भी गीला हो गया,
2: मौसम बेहतरीन बन चुका है फर्स्ट क्लास।
0: अच्छा जी फर्स्ट क्लास, गर्मी की तपिश जो आई थी वो थोड़ी सी मद्धम हो गई है, हैं जी?
2: जी परसों मैंने टेलीफोन किया था अपने भाई गाँव लखीमपुर पटना।
0: अच्छा जी,
2: तो वहाँ पर जो कजन था हमारा उसके वाले सब के बारे में मैंने कि उसका हाल वो कैसा है, तो उसने बताया कि उसके गुड्डों को दर्द है, गुड्डे की तकलीफ है।
0: अच्छा जी,
2: तो मैंने कहा यार मेरा वो कजन का दर्द तू इस्तेमाल क्यों नहीं करते, तो उसने कहा यार वो कहाँ मिलते हैं अलग मरत में।
0: हाँ,
2: तो अलग मरत में आपका कोई वो है कि वो वहाँ जाकर उसको ले ले?
0: अच्छा जी, लकी मरवत में तो नहीं, लेकिन नोरंग में एक दो हमारे हमने पॉइंट ओपन किए थे और नोरंग और साथ में लकी मरवत के मैं पूछूंगा, जो हमारे दूसरे हेड है ना वो मैं उनसे पता करके कल आपको बताऊंगा कि वहां पर किस जगह पर मौजूद है, क्योंकि
2: वो बस बेचारा पर मैंने खुद उसको बता दिया, मैंने कहा खुद मेरा उनको पाँव सूजा हुआ था, मैंने इस्तेमाल किया, दो दिन इस्तेमाल किया سارا درد بھی ختم ہو گیا اور سارے پاؤں کا سوجن بھی ختم ہو گیا. بڑے میں نے اس کی تعریف کی تو اس دوست کہنے کا یار جلدی سے بتاؤ ہمارے باپ کو بڑی تکلیف. میں نے کہا میں پتہ کر لیتا ہوں لیکن اگر کل کہیں ہوا تو آپ کو بتا دوں گا.
0: ہاں ضرور بتائیں گے. اور ماشاء اللہ آپ نے بھی یوز کر لیا ہے اور آپ کو ماشاء اللہ رزلٹ مل گیا. ہاں جی
2: جی وہ سوجا ہوا جو تھا نا وہ تقریباً ایک مہینے سے میں نے ڈاکٹروں کا علاج کر کر کے تھک چکا. وہ آپ کا چیلا بھی میرے پاس موجود ہے لیکن وہ اس کو لے جانا مسئلہ لابھائی کا ہو.
0: ہاں ہاں تھوڑا سا لگایا ہوگا آپ نے, دو چار دفعہ لگایا ہوگا اور ماشاء اللہ
2: دو دن میں نے لگا دیا. سب سوجن بھی ختم ہو گیا اور سب کو درد بھی ختم ہو گیا ٹھیک ٹھاک.
0: تو ٹانک والوں کو مشورہ دیں گے جو لوگ درد میں مبتلا ہیں, پشتوں میں آپ کو آتی ہے پشتو؟
2: تو وہ سن رہے ہیں نا سارے ٹانک والے سن رہے ہیں. اگر وہ اس کے فائدے نہیں اٹھاتے تو تم کا اپنا نقصان ہے بھائی,
0: اپنا نقصان ہے اگر نہیں اٹھاتے تو. بالکل ایسے
2: دوبارہ لکی مرت میں اگر کہیں وہ ہو تو یہ نہیں تو پھر میں یہ کس طریقے سے وہی بھیجوا دوں.
0: میں آپ کو کل انشاءاللہ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جناب, اوکے جناب, تھینک یو سو ویری مچ جناب. جی جناب شیر ولی کنڈی جنرل اسٹور ہمیں موجود ہیں پہاڑ ڈھوتر اڈا پر, یہ سیل پوائنٹ ہے ہمارا. اور کہتے ہیں خلیل بھائی کیسے ہو, موسم زبردست ہے, بارش شروع ہو گئی ہے ڈھوتر اڈا میں. جی جناب یہ ڈھوتر اڈا والے آپ لوگوں کا تو ایف ایم بند ہے. ٹھیک ہے جناب, آج ہم گلوبل ایف ایم 91 اور پہاڑپور سے جا رہے ہیں, پہاڑپور میں سوری ٹانگ سے جا رہے ہیں, پہاڑپور کا ایف ایم بند ہے. شیر ولی جو ہے ہمیں سن رہے ہیں ڈھوتر اڈا کے اوپر. شیر ولی کے پاس ہمارے سارے پروڈکٹ ہوتے ہیں. جی السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. اللہ کی نے والے
0: الحمد للہ. جی ٹھیک ٹھاک, کون سر نالی میں نارے سے اپنا سے جناب صادق بھائی
3: زبردست. جی بس ساڈے تے بارہ جی ہلکی تے نیناما تیز رہی.
0: اوئے ہوئے نیناما تے فصلاں تے کٹ چھوڑے نا تسا کہ فصلاں کھڑے نال تک لوگان نے
3: نہیں نکل چکن.
0: اچھا نکل چکن, چلو ہن کوئی اتنا نقصان تے میرے خیال ہے کہ اندا او کون انسان اگر بارش کی
3: 4-5 منٹ آئے تے ہی تیز.
0: اچھا چلو چلو اللہ پاک رحم اللہ معاملہ فرماوے.
3: تیرا کھنگ دے کیتے کوئی شیرا بھیتے
0: دا کھنگ دے کیتے کونی, میدہ خراب اگر ہوے, میدہ تہاڈا سڑدا ہوے, بد ہضمی تھیندی ہوے, گیس تھیندی ہوے, سینے جلن ہوے, اون دے واسطے سارا سیرپ موجود ہے.
3: ہاں اے وی لگدے نے, اے ٹھیک گل ہے.
0: ہاں بس ہاضمہ کنٹرول سارا سیرپ ہے سہی, ہاضمہ کنٹرول سیرپ. ٹھیک ہے جی نا, تو او کو استعمال کرے سو انشاءاللہ تے جرے نہ وقت مزہ آوے سی. ٹھیک ہے
3: جی,
0: ساری کچھ ہے بھی نہیں, سیرپ کے علاوہ کوئی تیل نہیں پیونا, اللہ کا نام ہے. ٹھیک ہے نہیں بھائی نہیں پیونا نہیں, سارے پروڈکٹ جتنے بھی ہیں صرف سیرپ پیونا لے تے پھکی کھانا لیے, ان کے علاوہ تیل سر تے لاونا سر تے لاونا کوئی نہیں پیونا. ٹھیک ہے جناب, تے جڑا شتر مرغ دا تیل ہے درد والا وہ بھی لاونا ہے تسا, کوئی پیونا نہیں, کو تھوڑا گرم کر کے او کو اپنے جسم تے لاسو تے انشاءاللہ سکون ہی چاہ ویسے دوائیاں کرے سو سگو. ٹھیک ہے,
3: درد والا مسئلے اج کل بہو ائے ودے نے تیل ضروری ہے نا,
0: اترے ودے مسئلے سگولے سے لوگان دے وچ کے لوگان کو کیڑے مسئلے زیادہ ہوندے, موٹاپا ہوندا ہے, معدہ خراب ہوندا ہے, تے جناب درد ہوندے, تے اسے ترے شیاں بنائیں, شفا درد تیل درداں واسطے, ہاضمہ کنٹرول سیرپ معدے واسطے, تے ویٹ کم پیٹ کم, چربی پگھالن واسطے سائیں. ٹھیک ہے سائیں
3: جی, میرے
0: سے تے ایک اور میں کیویں پگھلے سا. چلو تسا بعد میں تے انتظام کرو تے درداں والا کوئی معاملہ ہے تو او کی نو. ٹھیک ہے سائیں, بکری دے دودھ دا بڑا ہے, ملکی سوپ کو آدن, گوٹ ملک, ملکی صابن. ٹھیک ہے سائیں, زعفران والا صابن ہی ہے, زعفران والا گنو اپنی مرضی ہی وے. ٹھیک ہے سائیں, چاول والا گنو اپنی مرضی ہی وے, چکندر والا گنو اپنی مرضی ہی وے. ٹھیک ہے جناب, اے بکری والا گنو اپنی مرضی ہی وے, بہت ساری ورائٹی ہیں سارے صابن والے, جیرا صابن گنو تو کو مزہ آسی تے وائٹنگ ملسی انشاءاللہ.
3: کیا کمال ہے, بس استعمال جے کرے تو واتے کال کرے تو کینے ہے دیکھو,
0: کچھ ہے ہن گنو, چا جیب وچ 4 پیسے کٹ کے کیسن تے لو انشاءاللہ مزہ آویسی تو. ठीक है सही
3: ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕੋਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਗਾ ਵਾਂ ਕੀ ਨਾ
0: ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਵੇਂਦੇ
3: ਚੀਨਾ
0: ਚੀਨਾ ਟਾਂਗ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਡਬਰੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸੇ
3: ਨਾ ਹੇਠ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹਤਾਲੇ ਕਨ ਉਤੂਏ
0: ਹਤਾਲੇ ਕੋਲ ਉਤੂਏ ਚਲ ਹਤਾਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਤਾਲੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਆ ਟਾਂਗ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵਾਦੇ ਤੋਂ ਗਿਨ ਗਿਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ
3: ਟਾਂਗ ਦਾ ਆਨ ਕਰੀਬ ਲਾਵਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੋਂ ਵਾਦ ਗਿਨ ਗਿਨ
0: ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਸਾਦਿਕ ਭਾਈ ਚੀਨਾ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਬਾਤ ਬਤਾਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ और वो कौन सी बात है जी सादिक भाई अल्लाह हाफिज़ जनाब अच्छा ये शो पर बैठने से पहले ना मुझे एक मेडिकल स्टोर वाले ने बड़ी कल भी कॉल की परसों भी कॉल की और अभी गुस्से के साथ उसने कॉल की है प्राइवेसी का मसला होता है नहीं तो मैंने आपको उसकी कॉल सुना देनी थी ना उसने जो मैसेज मुझे वॉइस मैसेज किया है इतने गुस्से के साथ उसने मैसेज किया कहते यार जब दे नहीं सकते हो तो हाजमा सिरप बनाते क्यों लोगों को एफएम के ऊपर क्यों बताते हो जब प्रोवाइड नहीं कर सकते हो मतलब उसको मिल नहीं रहा था अब मेडिकल स्टोर वाले के पास कितने सिरप होते हैं यार कितने सिरप होते हैं हजारों किस्म के सिरप होते हैं लेकिन जिस बंदे ने केसन का हाजमा कंट्रोल सिरप पिया है ना जनाब उसे भी समझ आ जाएगी यार कितनी देर के लिए ये सिरप सुकून देता है जब मैदे में जलन होती है जब गैस होती है जब बदहजमी होती है तो एक आम सिरप जो मैदे वाला है वो कितना पीना पड़ता है तो आराम आता है और केसन का हाजमा कंट्रोल सिरप कितना पीना पड़ता है तो कितना आराम आता है तो वो लिटरली मुझसे लड़ रहा था बंदा हैदर मेडिकल स्टोर रंगपुर अड्डा और कह रहा था कि क्यों नहीं देते हैं जब आप लोगों के पास जो है एफएम के ऊपर क्यों बताते हो उधर लोग हमारा सर खा जाते हैं तो कभी कभी सप्लाई डिले हो जाती है लेकिन बात करने का मकसद क्या था कि एक मेडिकल स्टोर जो कि टॉप का मेडिकल स्टोर है हैदर मेडिकल स्टोर वहां पर बीसियों किस्म की मैदे के सिरप हैं लेकिन जो हाजमा कंट्रोल पी चुका है वो कोई और नहीं पीता एक कॉलर हमारे साथ हैं जी अस्सलाम वालेकुम
4: वालेकुम सलाम
0: जी कौन है हमारे साथ नाम बताएंगे अपना
4: जी मैं कश्यप बात कर रही
0: हूँ कश्यप बात कर रही है गुराई से कश्यप कैसी है आप ठीक है खैरियत से है
4: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप कैसे हैं
0: अभी तो आप खुश होंगी कि आपको आवाज बिल्कुल सही आ रही है
4: जी बिल्कुल इतनी अच्छी आवाज आ रही है
0: नहीं अब खुश है ना मुझे ये बताएं सिर्फ
4: जी बिल्कुल खुश है 91 पे ना
0: हाँ 91 के ऊपर तो फिर आपने कॉल तो आज इतने दिन बाद की है यानी कि आपको तो हमें जो है 28-29 तारीख को कॉल करनी थी जी आपको सबसे ज्यादा इंतजार था आप बड़ी मुश्किल से पहाड़पुर एफएम को सुनती थी और कहती थी भाई कब आएंगे डेरा में कब आएंगे 91 के ऊपर तो आपके ऊपर तो जुर्माना होना चाहिए 1 किलो खालिस देसी घी का जुर्माना पता हो तुम्हें बताओ हैं जी नहीं नहीं नहीं मैं गप कर रहा हूँ लेकिन देखे ना आपको सबसे ज्यादा इंतजार था हमारे शो का और आज कितनी तारीख हो गई है आज है 14 तारीख यानी कि 16 दिन बाद आपने कॉल की हमें अच्छा जी पेपर थे आपके चलो ठीक है जी बहुत शुक्रिया कश्यप ग्लोबल एफएम 91 को सुन रहे हैं कश्यप इस वक्त आपकी आवाज जो है वो टांक में भी जा रही है तो मेरी बहन कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल मेरी करती है केसन की और उसने फायदे दिए हैं जो आप टांक वालों को भी बताएंगी कि भाई बहनों और भाइयों ये चीजें लो केसन की
4: हेयर ऑयल मैं तो इस्तेमाल करती हूँ शैम्पू भी और ग्लूटामाइन क्रीम भी
0: अच्छा यानी केसन की जोड़ी भी इस्तेमाल करती हैं और बिल्कुल ये उसी तरह हीर रांझा सस्सी पुन्नू लैला मजनू की तरह है ना ये वाली जोड़ी
4: बिल्कुल ऐसे
0: है ना जैसे उनके अंदर सच्चाई थी वफा थी निभाना था तो ये सब कुछ ये सारी बातें इस जोड़ी के अंदर है कि नहीं है ये बताए पहले
4: जी बिल्कुल है अभी तो मेरे बाल जो देखता है कहता है कि इतने अच्छे बाल हो गए पहले तो ऐसे नहीं थे
0: तो कितना टाइम आपको हो गया मेरी बहन को ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए केसन का ऑयल और शैम्पू डेढ़ साल हो गया तो रेगुलर आप इस्तेमाल करती रही हैं और अब आपका ये ड्रीम पूरा हो गया है कि कितने लंबे बाल आपको चाहिए थे कितने खूबसूरत चाहिए थे मिल गए आपको हाँ भाई पूरा कुरई केसन को यूज करता है पूरा जफराबाद केसन को यूज करता है भाई उनको जब एक चीज की सच्चाई अच्छा मुझे एक बताएं ग्लूटा वाइट क्रीम भी आप लगा रही हैं माशाल्लाह
4: जी बिल्कुल लगा रही
0: ग्लूटा ने कैसा रिजल्ट दिया ग्लूटा वाइट केसन की जो है स्पेशल
4: बहुत अच्छा रिजल्ट है ग्लूटा वाइट का
0: अच्छी
4: उसकी खुशबू बहुत अच्छी है
0: खुशबू तो हमारी हर प्रोडक्ट की अच्छी है हमने बड़ी महंगी महंगी खुशबुएं डाली हुई हैं इसके अंदर तो यानी कि आप ये कहती हैं कि भाई ऑयल शैम्पू ने आपके बालों की किस्मत बदली है और ग्लूटा वाइट ने आपके चेहरे की किस्मत बदली है
4: हाँ जी बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट है
0: ग्लूटा वाइट क्रीम के साथ क्या साबुन कौन सा इस्तेमाल करती है फेस वॉश लगाती है या ग्लूटा का सोप क्या इस्तेमाल करती है
4: मिल्की
0: साबुन इस्तेमाल करती है केसन का जो मिल्की सोप है कभी चक तो नहीं लगाया आपने मिल्की साबुन को
4: जी
0: मैंने कहा कभी साबुन को आपने चक तो नहीं लगाया वो तो बर्फी है बिल्कुल
4: नहीं नहीं मैं छोटी बहन ना वो कहती है कि ये तो बर्फी की तरह खा लू, मैंने कहा नहीं है बर्फी नहीं है साबन है।
0: ये बर्फी नहीं है ये साबन है। तो माशाल्लाह चार चीजें आपके इस्तेमाल में हैं, और कभी सोचा है कि इनमें से किसी को तब्दील कर दूं, इसकी जगह कोई और ले आऊं?
4: जी
0: मैंने कहा कभी सोचा है कि इन चारों की जगह तब्दील करके कोई और चीज ले आऊं?
4: नहीं
0: अच्छा कभी नहीं सोचा। और इनको पक्के आपने मजबूती से पकड़ा हुआ है कि इन चीजों को नहीं छोड़ना, नहीं तो खूबसूरती गई।
4: मेरे रिश्तेदार जो आपको सुनते नहीं वो भी आपके पराठा यूज करते हैं, आपको जानते भी नहीं है फिर भी आपके पराठा की यूज करते हैं।
0: अच्छा जी जानते भी नहीं है तो उन्होंने तो आपको देखा है ना, वो खलील को थोड़ी देखेंगे, वो तो कशफ के बालों को देखेंगे, कशफ के चेहरे को देखेंगे, तो फिर तो जरूरी
4: आपके साथ बाराती रहती है।
0: अच्छा जी हाँ, बहुत सारी फीमेल कुरैश से बहुत सारी फैमिली जो है शाजी आती रहती हैं, और भी बहुत सारे लोग आते रहते हैं ना हमारी शॉप पर। अच्छा जी शाजी आपकी कजन है?
4: बिल्कुल
0: हाँ, आसिफ बलोच जो उनके म्याऊ है वही ना?
4: जी बिल्कुल।
0: वो जिनको ब्लड प्रेशर का मसला था, हमारी फक्की इस्तेमाल की तो उनका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया बिल्कुल।
4: जी बिल्कुल वो अभी मेरे साथ बैठी हुई है।
0: वो साथ बैठी हुई, चलो मेरे सलाम फिर शाजिया को दे दो। शाजिया बात करना चाहती तो करवा दो।
4: नहीं वो नहीं करना चाहती बात। अच्छा।
0: चलो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। कश्यप हमारे साथ कुरई से मौजूद थी, और कुरई में बहुत सारे कस्टमर हैं हमारे जनाब जो केसर के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, और ये जो अभी लड़की बात कर रही थी इनके कजन है, लीड्स स्कूल के प्रोफेसर हैं ये, ग्रिड रोड के ऊपर जो लीड्स है वहां पर उनकी तस्वीर भी लगी हुई है आसिफ बलोच की। तो वो एक दिन हमारी शॉप के ऊपर आए, इधर तो आए तो उन्होंने बाइक ठहराई हमारी दुकान के सामने और चुप करके अंदर आ गए। पहली दफा मैंने उनको देखा था, तो फिर मैंने उनको कहा कि भई खैरियत, उन्होंने कहा भई मेरे घर वाले ना आपके प्रोडक्ट पिछले जो है 2-3 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ। मैंने कहा क्या चीज़, कहते हैं आपकी जो वेट कम वाली फक्की आई है ना, तो वो मैंने जैसे इस्तेमाल की मेरा ब्लड प्रेशर इतना हाई रहता था कि क्या आपको बताऊं, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। जी जनाब, एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात को कंटिन्यू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई
0: जी? हमारे साथ सोनिया आप भी आ चुकी है।
5: जी बिल्कुल।
0: क्या हाल है जनाब, ठीक है, खैरियत से हैं आप?
5: ठीक है।
0: प्रोग्राम सुन रही हैं आप?
5: बिल्कुल सुन रही हूं।
0: अब देखिए आपने भी उस दिन कहा कि शिफाए दर्द ने आपको सुकून दे दिया, आज असद भाई हमें टांग से कह रहे हैं कि भाई जादुई चीज है तो केसर शिफाए दर्द। हेलो
5: जी, आवाज आ रही है। मौसम
0: आप तो बेटर, अच्छा हो गया। मौसम माशाल्लाह बहुत जबरदस्त हो गया, और गर्मी के अंदर ऐसे बादल आ जाए और सूरज मियाँ चले जाए तो फिर मौसम ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है।
5: बिल्कुल अधूरे अजन और सब सुनने वाले को सलाम, और केसन जोड़ी वाकई लाजवाब है।
0: हैं जी, हर घर की जरूरत है केसन जोड़ी, ये बताएं आप सोनिया।
5: ये तो रोजाना इस्तेमाल करने वाली चीज है, बिल्कुल जरूरत है,
0: और इस्तेमाल करेंगे हर रोज तो बालों का ख्वाब पूरा होगा ना कम अरसे में इंशाल्लाह।
5: जी हाँ
0: इंशाल्लाह। चलो जी ठीक हो गए जी, बहुत शुक्रिया सोनिया अवान, आप ही हमारे साथ ग्लोबल एफएम 91 से मौजूद थी। और मैं आई थिंक अब आप लोगों के मैसेजेस को मैं थोड़ा सा टाइम दे दूं, आप लोगों के मैसेजेस शामिल कर दूं। तो वो हम बात कर रहे थे क्या नाम है, लीड्स कॉलेज के जो आसिफ बलोच है प्रोफेसर साहब, वो कह रहे थे कि अब जो है मैं पेट तो कम होगा सो होगा लेकिन एक मेरा बहुत बड़ा मसला जो हल हो गया, मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ठीक है ना, तो ये जो बात अभी फीमेल कर रही थी, बहुत ज्यादा हमसे लेके गई है ये वेट कम पेट कम की फकी, बहुत इफेक्टिव है यार, बहुत ही जबरदस्त चीज हमने ये बनाई है। और मुझे आज टांग के डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से कॉल आई, और वाकई यार वाकई ये प्रोडक्ट दोनों छा गए हमारे शिफाए दर्द और वेट कम पेट कम टांग के अंदर भाई छा गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके ऊपर हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है, कोई कमाल नहीं हमारे अंदर। ठीक है जनाब, ये हमारे रब का करम है, रब का फजल है, और रब की अता करदा शिफा है जो हमारे प्रोडक्ट्स जरिया हैं, लोगों को कम कीमत में उनको शिफा मिल रही है। और डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे बताया कि भाई ये दो प्रोडक्ट आपके पहले महीने के अंदर ना यूँ समझ लें कि फ्लाई कर गई हैं, एक शिफाए दर्द और वेट कम पेट कम, क्योंकि ऑप्शन लोगों के पास कोई और नहीं है। ठीक है जनाब, बहुत सारी कंपनियों के ऑयल भी होते हैं, शैम्पू भी होते हैं, क्रीमें भी होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन बहुत कम कंपनियां ऐसी होती हैं जो ऐसे यूनिक प्रोडक्ट बनाती हैं जैसे कि हमने बनाए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वो लोगों को समझ आई है कि भाई ये चीज़ें तो हमारे पास टांग में पहले नहीं थी, हमें ये इस्तेमाल करनी चाहिए, तो डेफिनेटली लोग उनको इस्तेमाल कर रहे हैं और भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे कि मास्टर जो है کیا نام مجھے نام کیوں اکثر بول جاتا ہے، ماسٹر صاحب جو ہیں ٹانگ سے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، فتح اللہ صاحب، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ماشاء اللہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، اتنے عرصے سے ڈاکٹروں کو دکھا رہا تھا، اور اکاؤنٹنٹ اسد انکل جو ہیں وہ بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ میں نے بھی اتنے ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن تھوڑا سا استعمال کرنے کے بعد باقی ویسا کا ویسا پڑا ہے، لیکن میری سوجن بھی ختم ہو گئی، میرا درد بھی ختم ہو گیا۔ تو بھائی ان کی بات کہ اگر نہیں لگائیں گے، نہیں خریدیں گے تو ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑیں گے، آپ اپنا جو ہے میں نہیں وہ لفظ کہنا چاہتا لیکن اپنا نقصان کریں گے۔ کم قیمت کے اندر ایک آپ کو زبردست چیز ہم دے رہے ہیں تو ضرور اسے بائی کریں، خریدیں۔ دور ادن کا میسج، ادھر ہی ہماری گاڑی رک گئی تھی، ٹھیک ہے جناب، اور کہتے ہیں کہ استاد جی نے میری تعریف جو ہے دل کھول کے نہیں کی ہے۔ ہاں جی، آپ نے دیکھا تو میں نے دل نہیں کھولا ہوا تھا، دل بند کر کے میں نے آپ کی تعریف کی۔ واجی کہتے ہیں ان کا دل سے تھینکس، ورنہ مجھے لگتا تھا میری ڈھیروں دعائیں اور محبتوں کا تحفہ آپ سب کے لیے سجنا نہ پھر میل دعا، اللہ کے رحمتوں کے سار میں ہمیشہ کامیاب اور خوش رہیں آپ سب۔ آمین آمین، آلویز ٹیک کیئر، فقط وفا فاطمہ۔ سلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے آپ۔ مجھے لگا بھائی کہ آج آپ جوڑیاں بنا رہے ہیں، آپ کے سب پروڈکٹ بیسٹ ہیں بھائی، اس میں شک نہیں ہے۔ رانیا ڈیا خان سے سن رہے ہیں، گلوبل ایف ایم 91 والے جاگ رہے ہیں، اور میں نے ایک دفعہ 91 والوں کو ایسا جگانا ہے نا، میں بتا رہا ہوں، میں ایک دفعہ سارے سوئے ہوئے لسنرز کو اٹھاؤں گا، میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، اگلے مہینے سے پھر شیطانیاں شروع ہو رہی ہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، اگلے مہینے سے، ٹھیک ہے جناب۔ تین اسٹیشن تین گروپ، تین اسٹیشن تین ٹیمیں، ٹیم ٹانک، ٹیم ڈیرا اور ٹیم پہاڑ پور۔ وہ جو مقابلے ہمارے ہوتے تھے نا، ٹیگ لائنز کا مقابلہ، پوئٹری کا مقابلہ، کالرز ڈے کا مقابلہ، ہلا گلا، وہ سارا کچھ جو ہے پھر سے لے کے آ رہے ہیں ہم آپ لوگوں کے لیے، اور اس دفعہ شہروں کے مقابلے ہونے جا رہے ہیں جناب۔ ٹانک کا مقابلہ ڈیرا سے، ڈیرا کا مقابلہ پہاڑ پور سے، پھر پہاڑ پور کا مقابلہ جو ہے ٹانک سے، اور ٹانک کا مقابلہ پہاڑ پور سے۔ اس طریقے کے مقابلے کرائیں گے، نمبرز گیم ہوگی جناب، پورے مہینے کے مقابلے ہوں گے جس طریقے سے پہلے ہم کرتے تھے۔ تو ڈیرا والوں جلدی سے جاگ جاؤ،

जी जनाब, दानिया जो है हमारे साथ हैं, दानिया हमारी यूजर हैं, वेट कम पेट कम को इस्तेमाल करवाती हैं अपनी अम्मी को और अपने मैदे को ठंडा रखने के लिए। जनाब ये हमारे जो हाजमा कंट्रोल सिरप है ना, इससे इसे सिर्फ मैदा ठंडा नहीं रहता है, इससे दिमाग भी ठंडा होता है। क्योंकि आपको पता है, आपने एक लफ्ज जुमला सुना होगा कि भाई तुम्हारी पेट की गैस कहीं सर को तो नहीं चढ़ी हुई। आपने एक तरह से सुना होता है ना कि यार इसके इसकी मैदे की गैस जो है ना इसके सर को चढ़ गई है। तो क्या इसमें सच्चाई होती है या ऐसी ये कहावत है? तो सुनिए कि इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, बहुत ज्यादा इंटरलिंक है आपका मैदा आपके दिमाग के साथ। ये दोनों एक दूसरे को जफियां डालते हैं, पता हो आपको, ये मैदा और दिमाग। ठीक है जनाब, जब दिमाग टेंशन में होता है तो आपका मैदा खराब हो जाता है। ठीक है जनाब, फौरन इफेक्ट आता है, आपका मैदा खराब हो जाएगा। ठीक है जनाब, जब आपका मैदा खराब होता है तो आपको टेंशन रहने लगती है। तो इंटरलिंक है जनाब, ठीक है जनाब दोनों। तो भाई अगर आप आपका मैदा गर्म रहता है या आपका दिमाग गर्म रहता है, हाजमा कंट्रोल सिरप जो है इस्तेमाल कीजिएगा आप। और आप यकीन कीजिए कि हाजमा कंट्रोल सिरप इस्तेमाल करेंगे तो आपका मैदा भी ठंडा होगा और आपका दिमाग भी ठंडा। तहसील कुरैशी गरा शहबाज से अब्दुल हादी, अस्सलाम वालेकुम सने माशे। मरजब खान को सलाम कहते हैं, इब्राहिम को सलाम, और साइम कटी खेल है या कौन है उनको भी सलाम कह रहे हैं। कोई सानू गल नाल लावे नाम होया तेरो। अच्छा जनाब, कहते हैं कि भाई वेट कम पेट कम जो फक्की है, फक्की नहीं है, फक्की बोलते हैं इसको, फक्की है देने वाली कंपनी। तो कहते हैं कि भाई वेट कम पेट कम फक्की जो है मैदे को फायदा देती है। सबसे पहला इस ये जो वेट कम पेट कम फक्की है ना जी, फक्की सबसे पहला इसके जो फायदा होगा वो आपका मैदा ठीक हो जाएगा। जितने भी मसले हैं, गैस होगी, तेजाबियत होगी, जो भी मसला होगा ना, आपका मैदा ठीक हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आप जो एक्स्ट्रा खाते हैं, बेजा खाते हैं जनाब, आपको जरूरत ही नहीं होती और जो है ना हर जगह मुंह उठाए आप शुरू हो जाते हैं खाने के लिए। ये हर वक्त खाता रहना ना, ये इंसान की खूबी नहीं है और ना ये इंसान की फितरत है। ठीक है जनाब, जिस बंदे या बंदी का मुंह हर वक्त चलता रहता है ना भाई, ये इंसान की फितरत है नहीं। ठीक है जनाब, इंसान बस अपने टाइम के ऊपर खाता है, सुबह दोपहर शाम, आज सुबह हर वक्त जो खाता रहता है वो फिर मिसाल जो जानवर की होती है। जानवर को आपने देखा है, जब भी जानवर के पास से गुजरे ना वो मुंह हिला रहा होता है, जब भी गुजरेंगे मुंह हिला रहा होता है। तो भाई आपकी ये वाली आदत जो है ना, जो हर वक्त खाने वाली होती है, ये खत्म करती है केसन की वेट कम पेट कम फक्की। हाँ जनाब, जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, मैदे को ठीक रखेगी, आपके एक्स्ट्रा चर्बी को भी पिघलाएगी। आप मेरा मान पाकिस्तानी भाई। अच्छा कहते हैं कि एक डेरे वाल जाग चुके हैं, नहीं जी और भी जागे हुए हैं। आप तो सोते नहीं हो, जागता तो वो है जो एक दफा सो जाए यार। गांव में रवान छोड़ के हुन मेनू फिक्र ना कोई, जीना मरना बस नहीं ना बस। जी जनाब, केसन के प्रोडक्ट भी बहुत सारे, और उन्हीं प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे फेस वॉश बहुत कमाल के हैं, और इन फेस वॉश की तादाद जो है वो चार है। ठीक है जनाब, चार फेस वॉश हैं, और मैं कहता हूँ अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं गर्मियों में क्या लगाऊं, तो मैं उसको बोलूंगा कि सुबह शाम फेस वॉश इस्तेमाल करो केसन का। ठीक है जनाब, अगर आपकी स्किन ऑयली है, बहुत ज्यादा ऑयली है, तो गो पिंपल फेस वॉश खरीदें, और वाइटनिंग का आपको शौक है वो वाइटनिंग भी देता है, और वाइटनिंग के लिए सेपरेट भी हमारा फेस वॉश है, लवली फेस वॉश जिसको कहते हैं। और कभी भी जब भी आप अपने चेहरे को धोएं, भाई टांक वाला सुन लो मेरी बात, तवज्जो से सुन लो, आज तक आपको ये बातें किसी ने नहीं बताई, हम बता रहे हैं, तो अपने पल्लू से बांध लो। ठीक है जनाब, जब भी अपने चेहरे को फेस वॉश धोएं खुश करने के बाद, कभी भी ऐसे मत छोड़ दें कि फेस वॉश से चेहरा धोया, तौलिया से खुश करके छोड़ दिया, नहीं, ये बहुत बुरी आदत है, इसके बाद बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। जब आप तौलिए से चेहरे को साफ कर लें तो उसके बाद ब्यूटी स्प्रे का इस्तेमाल करें, अरके गुलाब और विटामिन सी से बने हुए सीरम का या स्प्रे का इस्तेमाल करें, जैसे केसन का ब्यूटी स्प्रे मौजूद है जनाब, 200 रुपए का है, अरके गुलाब और विटामिन सी के साथ बना हुआ है जनाब, और आपके स्किन को नरिश करता है, स्किन को फ्रेश रिफ्रेश करता है, और आप पहले से ज्यादा प्यारे लगने लगते हैं। तो जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुलाकात होगी 4 से 5, कल तक की इजाजत, अल्लाह।

0: मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशिया, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है, वो ही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन-फ़यकून का मालिक है, एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।

0: बिल्कुल सी फरहान वी के नैन्सी सीज़ा इनाम तो तैयार हुई लोड़े हैं इनाम तो तैयार हुई लोड़े हैं इशावा अज़र दर्ज कीम देखे न मुश्त भी आया अज़र दर्ज कीम देखे न दा इनाम मुश्त रोके शाह आए हैं इनाम इनाम दादी जी सवाल दादी जी चगात से शेदी के न कि मुझे सुम्र सफ़को अगाम रतूरी शी सही दे सी अकलमन के लिए इशारा काफी है ठीक दिस लगा से शरी चमंग है सुमर सफको हमर तुरे शहर कम पखानी खलक दे वो तो बहुत पता लगी शिकन एस न सब हो कि दले शगा शीन उस ने में नवी कहने से सुभान है जी मख के बहु शाह मख के कला मुश वड़ गयो आगा बहु सही ना
1: तम गुजारा दुनिया नशी सुगम
0: ओके जी सरा बजयूत कछि बरकियानो हाले शी बिस्मिल्लाह जन स्टोर दिमेश खियांदी बहाई यो दिगे ना लकदा यो दस स्टोर दे गना छि छिदा खर्चा के वेसी लकदिन मोता टेक सिर सिर सिर बकैच कम दमंग फैमिली शॉपिंग सेंटर द जी सारा मिसुति मोता बार बार जमा खुरिया दे वेसी او د دین لوچ نور کمی د مخ یاندې ایمه ته بار بار یو د یو خو بس ایس ټیکس نه تی نرسی شان ایس خرچامه ته نه ملاوی شي او بار

मेरे चेहरे पर पहले दाने और दाग धब्बे थे। मैंने अपने चेहरे के लिए मुख्तलिफ किस्म की क्रीमें, एक्ने ट्यूब्स और मुख्तलिफ फार्मूले आजमाए, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने अरूसा शॉपिंग सेंटर से एश्मा एक्ने ट्यूब और एश्मा एक्ने सोप लिया। चंद दिन इस्तेमाल के बाद मेरा चेहरा गोरा और दाग धब्बों से मुकम्मल तौर पर साफ हो गया। अब मैं तमाम रेडियो लिसनर्स को ये पैगाम देना चाहती हूँ, अगर आपने भी अपने चेहरे पर मुख्तलिफ किस्म की क्रीमें या टोटके आजमाए हों और फिर भी कोई रिजल्ट न मिला हो, तो एक बार जरूर एश्मा एक्ने ट्यूब और एश्मा एक्ने सोप आजमाइए। एश्मा एक्ने ट्यूब